संत का दुखन यार जा कटाए, संत का दुखन जमते नहीं छुटाए। संत का दुखन सुख सब जाए, संत का दुखन नरक मह पाए। संत का दुखन मत होए मलीन, संत का दुखन सोबाते ही न। संत के हते को रखे न कोई, संत का दुखन थान भ्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जी करै, नानक संत संग निंदक पी तरै। संत के दुखन ते मुख पवाए, संत के दुखन काग जो लवाए। संत के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन क्रमाए। संत का दुखन तिसना मह जलाए, संत का दुखन सब को छलाए। संत का दुखन तेज सब जाए, संत का दुखन नीच नीचाए। संत दुखी का ना हो, संत दुखी का था ना हे। नानक संत पावै ता ओए पी गत पाहे। संत का निंदक महा अत ताई, संत का निंदक खिन टिकर न पाई। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राजतिहीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन। संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग। संत की निंदा दोख मह दोख, नानक संत भावै ता उसका भी होए मोख। संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी कैसा का नहीं मित। संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे। संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा भिखारी। संत का दुखी जन्म मराए, संत की दुख ना सुखते टराए। संत के दुखी को नाही ठाओ, नानक संत भावै ता लय मलाए। संत का दुखी आदि बीते टूटाए, संत का दुखी किताय काज न पहुँचाए। संत के दुखी को ध्यान ब्रह्म आइए, संत का दुखी उजड़ पाइए। संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा। संत के दुखी की जड़ किछ नाहे, अपन बीजा पे ही खाहे।

तड़फड़ाए संत कदो की भूखा नहीं राजाए जो पाप की दनी त्रापै। संत का दुखी छुट्टा अकेला ज्यों बुआड़ तिल खेत माय दुहेला। संत का दुखी धर्म ते रह तो संत का दुखी सद मिथ्या कह तो किरत निंदका तुर ही पया नानक जो तिस पावै सोई थया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिला सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजा न आसा संत का दुखी उठ चला है निराशा। संत का दुख न तुष्ट कोए जैसा पावे तैसा को।

अष्टपदी मानु की टेको मृति सब जानो देवन को एक भगवान जिसका दिया रह अगाए बहुन तृष्णा लागे आए मारे रख एको आपो मानुख कै किछ नाही हाथ तिसका हुक्म बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोए उस्तत मन मह कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर लह जियो नैनो पेखो ठाकुर कर रंग साध संग बिनसा सब संग चरण चलो मारो गोबिंदो मिटाए पाप जपिया हर बिंदो कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दुर्गह नानकूजल मथा बड़भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करह विचारो से धनवंत गनी संसार।

0: त्याग जपहो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो आप जपहो अवराह नाम जपाव भगत पाए तरिया संसार बिन भगती तन होसी छार सर्ब कल्याण सुख निद नाम बूढ़ जात पाए बिसराम सगल दुख का होवत नास नानक नाम जप हो गुण तास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मंत्र अंतरी ही सुवाओ नेत्र हो पेख दर्श सुख होए मन बिगसा साध चरण तोए भक्त जना कै मन तन रंग बिरला को पावै संग एक बस दीजै करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्ब समाए प्रभ बख्शंद दीन दयाल भक्त वछल सदा कृपाल नाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्ब कटां करत प्रतपाल आद पुरख कारण करतार भक्त जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भक्त भाई लावे मन हीत हम निर्गुणी आर नीच अजान नानक तुमरी सरन पुरख भगवान सर्ब बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनक राज भोग बड़ियाई हर के नाम की कथा मन पहाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत फली सो करनी सुख बतनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साह संग प्रभ देहो निवास सर्ब सुख नानक प्रगास सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका पे ही फिर जाप अष्टपदी जब आकार हुकाशना दृष्टि ताप आपन तब कहते होता जब धारी अपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कमाता जब इसका वर्ण चेहन न जापत तब हर सो कहो किसै व्यापत जब अपने आप अपार ब्रह्म तब मोह कह किसोवत परम आपन खेल आप वरतीजा नानक करना हर न दूजा जब होवत प्रब केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी जब एक कह हर अगमा पार तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत धरै तब कमन निडर कमन कत डरै आपन चलत आप करना हार नानक ठाकुर अगमा पार बिनासी सुख अपनासन तह जन्म मरण कहो कह बिनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रभेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कह हो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौ मान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लगत कहो कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसै भूख कमन तृप्तावै करन करामन करना हार नानक करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत पाई जह सर्ब कला पह प्रवीन तह वेद देव कह को चीन जब अपने आप और तारा तो सगन अप सगन कह बिचारा जह अपन ऊच अपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्मात नानक अपनी गत जन हो आप जह शल छेद भेद समाया ऊहा किसा व्यापत माया आपस कौ आप आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागा चिंता जह अपना आप आपतियारा तह कौन कथा कौन सुनना हारा बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस कौ आप है पहुचा जह आप रचियो प्रपंचकार तेहो गुण में कीनो विस्तार पाप पुन तह पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंछावत को नरक को स्वर्ग बंछावताल जाल माया जंजाल हम मैं मोह परम पै पहार दुख सोख मान अपमान
1: अनेक प्रकार कियो बखियान आपन खेल आप कर देखे खेल संकुचे तो नानके कह

संत जना सुने शुभ बचन सर्वव्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करन करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बार पीओ ही नानक दर्शन देख समोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पा

सदा सुख होए आ मिलाए ले प्रभु सोए ओ तनवंत कुलवंत पतेवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जग तराया जन आवन कहे सुआओ जन कै संग चित आवे नाओ आप मुक्त

संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरो हर तन के परलेहो पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग पद परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पी।

सवैया पाए गहे जब तिथ मरे तब देखो अखतरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक न माने हो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने हो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे बखाने ओ दोहरा

गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरविंद जिस मह अमृत ज्ञान है मानक भगत वैरा।

सिख बारिय सिख संगरो दुष्य ते उठव तुत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तवे मरे पुरख जवन पग परे।

नानक जन ते उपाय कै संभाले सबना जन करता करना किया चिंता भी करनीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जवारी स्वस्थ तिस तिस

खत्री शब्दं सुर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जन पेउ नानकता का दास सो इंद्र निरंजन देव महला दूजा।

अहंस सहज सुभाय दर्शन परसै गुरु कह जन्म मरण दुख जाय होवै से पुतख समी नूर असह कुरसह झटी है तुद डिठे।

सोरठ सो रस पीजिया कबहु न पीका होए, नानक राम नाम गुण गाइया है दरगह निर्मल सोए। जो प्रभ रखे आप तिन कोई न मारई, अंदर नाम निदान सदा गुण सारई। एका टेक अगम मन तन प्रभ तारई, लगा रंग पार को न उतारई। गुरमुख हर गुण गाए

0: थे पहर लवन लवन्ना
1: सुतड़े असंख माया चुकी कारणे नानक से जगन जे रसना नाम उचारणे मृग तसना पेख भुलने वठे नगर गंधर्व नानक जिनी सच आराध्या नानक मन तन पाप

निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान। नानक गाविए गुणी निदान, गाविए सुनिए मन रखिए भाव। दुख पर हर सुख घर लै जाए, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहिया समाई। गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई। जे हा जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। गुरा इक देह बुझाई, सबना जिया का इक दाता। सो मैं विसर न जाई, तीर्थ नावा जे तिस भावा। विण भाणे के नाए करी, जेती सिरठ उपाई वेखा। विण करमा के मिलै लई, मत विच रतन जवाहर माणिक। जे इक गुर की सिख सुनी, गुरा इक देह बुझाई। सबना जिया का इक दाता, सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा, होर दसूनी होए। नवा खंडा विच जानी है, नाल चलै सब कोए। चंगा ना उर खाए कै, जस कीरत जग ले। जे तिस नदर ना आवई, ता वात ना पुछै के। कीटा अंदर कीट कर, दोसी दोस धरे। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतया गुण दे। तेहा कोई न सुझई, जे तिस गुण कोय करे। सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनया धरत धवल आकाश। सुनया दीप लोह पाताल, सुनया पोह न सकै काल। नानक

प्रतिपद्यते किते बुद्ध आखह दानव आखह देव आखह स्वर्णार मुन जन सेव किते आखह आखन पाहे किते कह कह फुट जाहि।

हारे। पेते राग परी स्यो कही अन्ना, पेते गावन हारे। गावह तोहन पौन पानी बैसंतर, गावह राजा तर्म दुआरे। गावह चित गोपत लिख जान है, लिख ले

0: Vai acreditar a casa, vai acreditar fazer.
1: Satruandi Pavan Hazuri Subhaman Guru Prasad Singh Ji ho. Aao fadi saanj pe ji Waheguru Ji ka khalsa, Waheguru Ji ki fateh. Bahut bahut dhanwad hai bachyan da jinne aap ji nu Pavan Amritmayi bani de naal jodya hai. Hamesha hi assi Satru de charna ch ardas karde haan ki ise tarah bache Guru Shabd de naal jude rehan. ते एक शब्द अपना होर समय है तो मैं वेट कर रहा सी भाई सवाई नहीं हजे तो आप प्रेजेंटेशन भी करनी सी जिन्ना समा रहा है तो एक शब्द आप होर पढ़ सकते हैं प्रमनिक रेडी प्रमनिक आ जाओ बेटा जी एक शब्द पढ़ लो हाँ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह

आत्मा अब जू जन को दाव सूरा सो पहचानिए जोल रे दीन के हेत पुरजा कट मरे कब हूं न छड़ खेत सज्जन सच्चा पातशाह।

बीते जे इतने इतने साल बिता चुके हैं ते की कदी असी अपने शरीर बारे सोचे कि कदी किसी ने अपनी जबान बारे सोचे। अगर परमात्मा ने सानू जबान ना दिती होंदी ते साडा जीवन कहो जिहा हुंदा। तन दौलत सुख दे समान कितने भी होन, रंग रूप सब कुछ होवे पर जे जबान नहीं

जिस परमात्मा ने तेनू बोलन की जाच दी ऐ रसना, फिर उस परमात्मा का सिमरन तू क्यों नहीं करती? ए जड़ी साड़ी जुबान है, ए है ते

इतना रोगी नहीं होता जिन्ना कि बहुता खाण वाला रोगी होता है। भुखे घट मरते ने, बहुते खाण वाले ज्यादा मरते। ए रसना सतगुरु जी उपदेश कर रहे ने, ए रसना तू अन रस राच रही। अन रस कहते ने होर रस, होर रसा विच ते पै गई, ए भी खा लवान वह भी खा लवान। किसी की निंदा चुगली की, किसी नु माड़ा कहा, किसी नु गालां कढ़िया, माड़ी गल करके किसी का घर बर्बाद कर दिता, ए काम ते तू कीता। पर ए रसना तू प्रभु का सिमरन नहीं किया। खाण दे भी रस हैं, झूठ बोलना भी रस है, निंदा चुगली करनी भी रस है।

जितने भी कहण सुनने वाले अपने अपने मन विच चाती मारी दिन दे विच कितना झूठ बोल दे, कितनी निंदिया चुगली कर दे, कितना कुछ इस जबान दे नाल खाने।

अपनी जबान नु समझाइए ऐ रसना जे गुरु महापुरुष ओ कहंदे ने अकाल पुरख शरीर दे जितने रोम ने इन्हां नु जबान

बच्चे का पहला गुरु उसकी मां होंगी। जे मां चंगी सिख्या देवे ते बच्चा नेक और चंगा बनेगा, पर जे मां ही अपनी जबान तो माड़ी सिख्या देवेगी ते फिर बच्चे का जीवन ते बिगड़ेगा। कई बारी मावां ही बच्चियां का जीवन बिगाड़दियां हन, झूठ बोलन की आदत पा के, चोरी करन दी, चीज लुकाउण दी आदत पा के। हुण मां ने कहा कोई पाप नहीं कोई पुन नहीं, ते पुत्र ने मन लिया। आर्या समाज दे सत रिखी इन्हां ने तौणा नीवियां कीतियां ते वाल्मीकि कुहाड़ा सिर तों तां चुकिया, लगे हन इन्हां नूं।